0: ये क्रेवर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी विनो और रेडियो पियोम चुन के रेवर क्वारो बीमार मैं पाचो इटी विनो और रेडियो
2: जय श्री गुए another one